वाह महफिल में तेरे हुस्न का, तेरे हुस्न का शोला जो भड़ के, शोला जो भड़ के, पहलू में बेफरार दिल, बेफरार दिल।

0: चिन्ना चिन चिन चू बड़ा कातिल मेरा यार चिन्ना चिन चिन चू बड़ा कातिल।
1: बॉलीवुड क्लासिक से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।
2: दिलबरा जब तेरा नाम।